से दुखन से वेदना भव समुद्र सुख जनाव एक रामना परम शांति परम निदान